इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आके

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से ले

0: देखकर
1: झीले वुलर की दिलकश लहरों तक
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
3: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
4: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM हर

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट

0: together, that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए

स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी

पास और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

तुझे छोड़ के जाने वाले, जा छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिडार 90.4 FM हर दिल।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने

साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि

0: एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

खिद होने लगी, एक रात में ही लव से होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पिए से है रखे जो घूटो से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी। मैं कभी बहुत ज्यादा सैड, कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैग कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी। टिप्पणी पे ना करूं टिप्पणी, तेरे जैसा कहां से मैं बस चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी प्यार तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी जलता है उनको मैं छाटता फिर, हिट पे हिट मैं मारता फिर, दिन रात लगातार मैं जागता फिर, उसके साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिर।

मचाना आता था, हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 पे एंजॉय कर रहा मस्तार शो व्हाट्सएप फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर साथ ही साथ याद रखिए कमेंट्स में प्यार देना जरूरी है क्योंकि आपका प्यार बनाता है रेडियो चैनल को सही मेरे यार हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में लॉग इन करें www.radiochannel.com पर मैं हूं जॉक्सूस ये है मस्तार शो सबसे हिट मेरी जान धड़काते रहो

0: Zeus.
1: कौन आया?
2: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, आइए आपको सुनाते हैं ब्रदर आज का वेदर। रेडियो चिनार 90.4 एफएम, वेदर अपडेट,
2: वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
3: आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 28 डिग्री सेल्सियस। दिन भर बादलों और सूरज के बीच में घमासान चलती रहेगी, लेकिन सूरज छुप जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता, कहता है हमारा ऑफिशियल वेदर है। कभी बारिश थमेगी, कभी चल पड़ेगी, वैसे अवकाश तो है इस पर होल डे। और वही अगर हम बात करें तो मौसम बदलने वाला है। रात का लुक रोज वैसे वारियन लोकन खुश करा दे, लाइक आह रोदस मज पाकनस मज बेहनस मज गरि अगर छुट्टी आसे तथ चाय पकौड़ बाकी चीज कस लजाफत, मतलब मजा बलाय तुम नजार इस वीकेंड। और अगर बारिश बरस जाए तो मजा ही आ जाए। वैसे सारे लोग तो बाहर भागते हैं लाइक पहलगाम, गुलमर्ग, पिकनिक स्पॉट्स की ओर, लेकिन एक का अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो घर में बैठ कर आए हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं।
2: वेदर अपडेट,
3: और उन्हीं के लिए जी हाँ मस्त।

0: से कसम पीने का मौसम आ गया और मौसम जो है ऑसम है।
1: अभी के लिए यूवी इंडेक्स वेरी वीक पर ह्यूमिडिटी 86%, विंड स्पीड 3 किलोमीटर, विजिबिलिटी 9 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:42 पर, आज का सनसेट होगा 7:34 पर। रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्स। शो का हिस्सा बनने के लिए 9999904 इज द नंबर। हर दिल की धड़कन रेडियो चनार, सटे हक्ट मेरे यार, धड़काते रहो।

0: kell el tumi.
1: Sorry, aklı kedi.

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
4: रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप, जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं वायरल थिंग्स, जो वायरल होते हैं, जी हां, व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। वायरल ऑन व्हाट्सएप, आइए बात करते हैं महाराष्ट्र एफ डी ए की, जिन्होंने ऑर्डर दिया है कि 50 मीटर तक नो जंक जोन होगा। अब कहां पर होगा जी हां, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, नो वड़ा पाव, समोसा और कोल्ड ड्रिंक। और ये जो ऑर्डर है सिक्योर करता है स्कूल्स को। स्कूल्स के आसपास 50 मीटर तक कोई भी वड़ा पाव, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी जंक फूड नहीं बेच सकता। महाराष्ट्र ने कर दिया है बैन, और अगर कोई इस वार्निंग को लाइटली लेता है तो उसके खिलाफ किया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन। जी हाँ, बहुत सारी दिक्कत जो बच्चों को जिस्मानी और दिमागी आ सकती है बिकॉज ऑफ द जंक फूड, और ये जंक फूड तो बड़ों को भी बर्बादी की कगार पर खड़ा करता है। जाहिर सी बात है, इंसान को क्लीन एंड हेल्दी खाना चाहिए, और ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे स्टेप्स कहीं ना कहीं एक इंसान की बेहतरी के लिए बुनियाद डाल देते हैं। हॉट इज फ्रीक्वेंसी, वायरल था तभी व्हाट्सएप पर आ चुका है। जॉक्सी उसके साथ मजेदार शो व्हाट्सएप से रहेगा।

0: Kamera ya.
1: Dostu Radio Channel 90.4 FM mapa. Sonra yamaz da açıyor WhatsApp. Ağır WhatsApp şu an Şiri Amarnath Yatra Updates. आपको बता दें कि टेम्पररली सस्पेंड किया गया है आज के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा को ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल एंड एडवर्स वेदर कंडीशंस। और यात्रियों से निवेदन है कि अगर वो यात्रा का आगमन करते हैं तो प्लीज एक बार कंसर्न अथॉरिटी से कांटेक्ट जरूर करें। सभी एसओपीज और गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें और उसके बाद यात्रा का प्लान बनाएं। टीम रेडियो चुनाव 90.4 एफएम आपकी अमरनाथ यात्रा संपूर्ण और सफल रहे।
2: ना अंत है उसका वो सब गाना इनका उनका वही है माला वही है मन का मस्त मलंग वो अपनी

0: हाय मैं हूँ आरजे सूर।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम मस्तर।

show. What's up, what's up show में आज का कोट ऑफ द डे. आज का कोट कहता है, यू कैन फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर बैरियर्स और यू कैन फोकस ऑन स्केलिंग द वॉल और रिडिफाइनिंग द प्रॉब्लम. और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव सर हक मेरे यार

0: bunch of zoos.
1: Going out.
2: Zeus. Zeus. Zeus.

और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं आप मस्तार शो व्हाट्सएप व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04904 इज द नंबर नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है और दिल की धड़कन रेडियो चैनल इस धड़कन को धड़काते हैं तो दोस्तों और जोरों से धड़काए अपनी बात हम तक पहुंचाए 8899-04904 ये मैजिकल बटन अपने फोन में दबाए आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज भी डीएम करके भी आप शो में शामिल हो सकते हैं डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर आए सर्च करें ज़ूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो जी हाँ व्हाट्सएप शो में आज बता दूं आपको आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्स इन इंडिया आज का थीम आज का टॉपिक रॉबर्स इन इंडिया क्योंकि आप जानते हैं दुनिया विकसित हो रही है वही आपको इंडिया के बारे में बता दूं दैट इट इज विद द ग्लोबल मार्केट हाईएस्ट रैंकिंग ग्लोबल मार्केट ऑफ एनुअल इंडस्ट्रियल रोबोट इंस्टॉलेशंस और रोबोटिक्स का सेक्टर जो है रैपिडली जो है बूम हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है एंड इट्स नॉट मी सेइंग इट्स द वर्ल्ड सेइंग अबाउट इंडिया रेडियो 90.4 एफएम आज हम बात करने वाले हैं रोबोट्स इन इंडिया की आपका क्या है विचार अपना विचार का आचार हमें भी परोसे हम तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं 8899-04904 एज आई सेड आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज भी व्हाट्सएप शो में रोबर्स इन इंडिया आज होगी बात तो कीजिए हमसे मुलाकात शेयर कीजिए अपने जज्बात रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्सियस मेरी जान सिटी हक्ड धड़काते रहो

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: सारेगामा कारवा 2.0।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: Jesus.
1: Con a...
2: Jesus. Jesus.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप शो में आज बात हो रही है रोबोट्स इन इंडिया की और वही अगर हम बात करें आज के टॉपिक की समीर हमारे साथ जुड़े हैं लगते हैं समीर की भैया आपको बता दूं कि मैंने भी घर में एक छोटा मोटा रोबोट बनाया था रोबोटिक आर्म बनाई थी जो कि फंक्शनल भी थी God bless you, Samir, and it's lovely to hear that because बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं और महारत हासिल कर लेते हैं एंड व्हेन इंडिया इज कंसिडर्ड अबाउट रोबोटिक्स तो आपको बता दूँ बड़े सम्मान के साथ शायरी के साथ हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है
2: yes.
3: एंड समीर ब्रदर थैंक यू सो मच वंस अगेन आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 8899-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409-0409- जी हाँ, अगर हम मार्केट स्टैंडिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रोबोटिक मार्केट्स इन एशिया दस इंडिया, और इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड्स जो है 8,500 यूनिट्स तक पहुंच चुके हैं रिसेंटली। और वही ऑटोमोटिव की बात करें तो वहां पर भी डोमिनेंस है इंडिया की। 42-45% ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो कि डिप्लॉय किए जाते हैं ऑटोमोटिव फैक्चरिंग, स्पॉट वेल्डिंग, पेंटिंग एंड असेंबली के लिए, और मारुति सुजुकी एंड हुंडई जैसी कंपनीज इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। और अगर हम इमर्जिंग सेक्टर्स की बात करें बियॉन्ड ऑटो प्लांट्स, वेयरहाउस ऑटोमेशंस में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हेवी मेटल्स को लिफ्ट करने के लिए, और वही अगर हम इंडिया की बात करें अपने साथ साथ पूरी दुनिया को सिखा रहा है रोबोटिक सॉल्यूशंस हमारा भारत। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रोबोट्स इन इंडिया आज का टॉपिक, आप भी हमारे साथ जरूर बताएं, अपनी बात हम तक पहुंचाएं और हम पहुंचाएंगे वहां जहां जहां जाती है रेडियो चिनार की आवाज। जी हां, दिल का साज नहीं कोई राज, रेडियो चिनार का निराला अंदाज, क्योंकि इस धड़कन को धड़काते हैं आप। और इस फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स के साथ मजेदार शो वॉट्सअप, मेरी जान

0: हेलो, पापा के जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे पूछूं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है मेरा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। यहाँ बॉलीवुड की तड़कती पड़कती खबरें और साथ ही साथ टेक वर्ल्ड से अपडेट्स कुछ ही देर में लेकर हाजिर हो जाएंगे। सुनते रहिए मस्तार शो व्हाट्सएप। मैं हूँ जॉग्सू, स्टे हुक्ड, धड़काते रहो।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Jesus.
1: Kom her, ja.
2: Radio Channel 90.4 FM, Bollywood News.

जी हाँ, बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं काजोल की। काजोल जो अपना आपा खो बैठी और गुस्सा दिखाया एक शख्स को जो उन्हें हग करने लगा था, एक फैन जो ज्यादा ही क्लोज हो गया। और ये इंसिडेंट तब कैप्चर किया गया जब काजोल अपनी कार के पास खड़ी थी। शी वॉज अबाउट टू हॉप इन हर कार जब पीछे से बंदा आया और उन्हें गले लगाने की कोशिश की। दैट फैन मोमेंट टर्न्ड अगली। बताया जाता है कि ऑफ कैमरा भी काजोल ने बड़ा ही हल्ला गुल्ला किया और इस अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शन को पपराज़ीज़ कैप्चर तो नहीं कर पाए, बट विटनेसेस वर दे हु सेड कि काजोल ने सिट्टी पिट्टी गुम कर दी उस फैन की। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो चैनल 90.4 एफएम। अगला सेगमेंट टेक टॉक्स आपके लिए। स्टे हुक्ड टू द रेडियो चैनल। हर दिल की धड़कन और हर इस धड़कन को धड़काते हैं आप।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Kommen wir her.
1: Dogs.
2: With RJ Sue. Oh, this frequency heard on radio channel 90.4 FM show was a voice of sugar segment Tech Talks.
3: Tech Talks,
2: जहाँ हम बात करते हैं टेक वर्ल्ड की और आइए बात करते हैं आईफोन का एक स्पेशल फीचर वॉइस आइसोलेशन. जी हाँ, एक कंटेंट क्रिएटर जिसने व्यूवर्स को अमेज किया आईफोन्स वॉइस आइसोलेशन फीचर दिखाकर नियर अ रोरिंग रिवर. पहले उन्होंने दिखाया कि किस तरह से आईफोन जो है पकड़ रहा है एम्बियंस ओवरऑल, और उसमें रोरिंग इस रोरिंग रिवर का शोर भी शामिल था, जिसके चलते विदाउट द फीचर हल्की सी आवाज इस कंटेंट क्रिएटर वीडियो क्रिएटर की सुनाई दे रही थी. एंड The moment she turned on the iPhone's voice oscillation option, viewers tarif karte nahi ruke.

Yes, the noise got completely isolated और उनकी आवाज़ क्लियर सुनाई देने लगी एंड उन्होंने ये रियल टाइम में करके दिखाया, जिसकी वजह से सारे जो आईफोन लवर्स हैं तालियां मारने लगे एंड सैमसंग यूजर्स इस बात पर कटाक्ष करने लगे। Radio Channel 90.4 FM, बातचीत जारी है। You just sit here hooked to the hardest free

0: Kom maar, ja.
1: Tech Talks with RJ Seuss. That's the Radio Channel 94.4 FM. Most of the show was a WhatsApp Joker segment. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks में आइए बात करते हैं कुछ ऐसे tech secrets जो बहुत ही dark हैं. जी हाँ, डॉक देन द डॉक, ये सीक्रेट्स आपको जानने की जरूरत है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सीक्रेट्स, आपको बता दूं, योर स्मार्ट डिवाइस में ऑलरेडी नो योर होम. क्योंकि जब भी आप कोई स्मार्ट डिवाइस लाते हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके लोकेशंस, आपके मैप्स को रीड करते हैं और एक प्रॉपर मैप बनाकर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. और वही लैब ग्रोन ब्रेन सेल्स जो कि अब प्ले कर सकती है पोंग, एक गेम जो कि करंट सिग्नल्स के थ्रू खेला जा रहा है, और वो भी चेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और ईजाद किए गए हैं ऐसे बिल्बोस जिनके सामने से आप गुजरेंगे तो आपके चेहरे को रीड कर वो आपके मन पसंदीदा या शक्ल के हिसाब से एड्स दिखाएंगे. साथ ही आ रहे हैं स्मार्ट टॉयलेट्स, दे कैन आइडेंटिफाई हु यू आर ताकि आपकी हेल्थ डेटा को एनालाइज और अपग्रेड कर सके. और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दूं कि आपका स्मार्ट टीवी शायद कभी बंद नहीं होता. जब आप टीवी को ऑफ करते हैं एंड विद अ कनेक्टेड पावर सप्लाई दैट गोज ऑफ, द स्क्रीन गोज ऑफ बट द लिसनिंग मोड इज ऑलवेज एक्टिव. और वही एआई का इस्तेमाल करने वाले जानते हैं कि 2 सेकंड से भी कम टाइम में आपकी आवाज को क्लोन कर सकता है एआई.

और सबसे इंटरेस्टिंग जो भी आप डेटा डिलीट करते हैं दैट्स ऑलवेज देयर, दैट्स नेवर गॉन, और इसे किसी भी टाइम रिकवर किया जा सकता है. इमेजिन डेटा बी सेइंग अरे रजू तू आएगा बाबा जवा. और इस फ्रीक्वेंसी पर चॉक्सीज के साथ

0: कौन आया?
1: तो सो रेडियो चुनाव 90.4 FM और घड़ी का इशारा है। वैसे घड़ी देखकर जब भी मैं घड़ी देखता हूँ मुझे याद आती है वो वाली लाइन की, पहने इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। लेकिन अभी का डिफरेंट है, अभी जो हम घड़ी की तरफ नज़र कर रहे हैं तो

इशारा है कि जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे तभी तो परसों लौट कर आएंगे। बट आपने रेडियो चुनार सुनते रहना है, क्योंकि आपके वीकेंड का खास एहसास रेडियो चुनार दिल के करीब आपके पास। दिस इज जॉक्स साइनिंग अप फॉर टुडे, और जयदीप आपसे जुड़ेगी चुनार बीट्स लेकर कुछ ही देर में। जी हां, बीट्स ऑन रिपीट। Until we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, Tata, take care. Masalama.

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180

0: 7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाय हाय, मेरा तो इरादा ये है कि मैं रहूंगी आपके साथ इस वीकेंड के, थोड़ा सा इसमें और तड़का लगाने, इसको तड़कता फड़कता बनाने बराबर 2 बजे तक। है कयामत उस पे मैं हाँ आपके साथ हूँ बराबर 2 बजे तक। आप सुन रहे हो हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, शो चुनाव बीट्स बीट्स ऑन रिपीट वाइबन।

on repeat. Beats on repeat, shooting our beats. और ढेर सारी बातें बातें about weekend, क्योंकि weekend आते ही जो जोश मेरा हाई होता है, मैं क्या ही बताऊँ. I know आपका भी होता होगा ऐसा कुछ हाल, क्योंकि ये बेहाल नहीं, ये है सवाल, ये है ख्याल कि क्या है नेक इरादा हमारा. और यही है कि वादा हम अपने वीकेंड को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. अब बस यही है कि मुझे बताइए क्या कुछ होता है, यानी कि कैसी एनर्जी होती है हमारी वीकेंड पे. मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो भी घर से निकलते काम के लिए, उनको पता होती है कि ये फीलिंग ना वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग होती है. हाँ, बस ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मुझे ऐसा लगता है, बट क्या करूँ, आपकी जुदाई ना बर्दाश्त नहीं होती है कभी कभार. मुझे ऐसा लगता है ना कि क्यों भाई ऐसा दूर जाना भी अच्छा नहीं लगता, बट ये देखिए रेस्ट ज़रूरी है. और जब छुट्टी होती है उसके बाद में नेक्स्ट डे आती है और मज़ा आता है आपसे बात करके, क्योंकि आप मुझे मिस तो करते हैं ना. सब मुझे बताइए कि कितना अच्छा लगता है आपको ये स्पेशली दो घंटे हमारे साथ बताना, बात करना. और क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें होती है इससे कि मैं आपके साथ बात करती हूँ, यानी कि मैं अकेले नहीं हूँ. मेरी पूरी वाइब ट्राइब है, एंटरटेनमेंट के अलावा इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मैं अकेले नहीं हूँ, आप भी. और आपकी राय हम पहुँचाते हैं वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़. तो जल्दी कीजिए शो का समझ जाइए, आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन, तो धड़काते तो आप ही हैं. सो जल्दी से धड़काइए, बताइए क्या है हालात, जज्बात और ख्याल. हाय हाय, हम तो रुक ही गए हैं क्योंकि आप हैं और बैक टू बैक सॉन्ग्स ना हो कैसे चलेगा. हो ही जाता है, क्या करे, बेकरार इंसान इंतज़ार में ही होता है. बड़े इंतज़ार काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तभी तो मैं कहती हूँ आप सुन रहे हॉरर फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स अब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम डी सारी बातें हो रही हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर. तो क्या है अपडेट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का. सो आई टेल यू दैट NH44 यानी कि नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज स्टिल क्लोज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक एज रोड सरफेस इज राइट नाउ. नो इट्स नॉट लैंड स्लाइड्स, इट्स नॉट शूटिंग स्टोन्स, इट्स राइट नाउ स्लैशी मडी एक्सट्रीम स्लिपरी जो अभी रोड हो चुका है उसके कारण अभी भी बंद रखा गया है. सो अभी अगर हम देखें तो अभी ट्रैफिक पुलिस जो है वो अभी कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, कुछ भी उनके तरफ से नहीं आ रहा है. सो फिलहाल के लिए ट्रैफिक को अलोन नहीं किया जा रहा है नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर पे. तो अगर आपने प्लान बनाना है जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, तो उसके लिए आपने थोड़ा वेट करना पड़ेगा. और जो TCU जो हम देखे ट्रैफिक कंट्रोल रूम जम्मू श्रीनगर रामबन, एंड आई रिपीट इट, अगर आपको जाना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. इट्स फॉर TCU जम्मू इट्स 0191-2459048 एंड फॉर श्रीनगर इट्स 0194-2450002 and it's Ramban, it's 9419993745. So अगर आपने जाना है सो गाइडलाइंस के मुताबिक ही आप अपना प्लान बनाए, एग्जीक्यूट करें एंड बी कॉशियस, बी केयरफुल, क्योंकि हमने गाड़ी चलानी होती है, उड़ानी नहीं. एंड फिलहाल के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, पता ही मुझे आप काफ़ी स्मार्ट है मेरी बातें भी आपको. देखिए मुझे पता है कि आपको अच्छी लगती है मेरी बातें और आप ये भी सोचते हैं कि देखिए कितना ख्याल रखती है, बट मैं क्या ख्याल रखूँ. आप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यानी कि यू आर वेरी प्रेशियस गिफ्ट, यू आर वेरी प्रेशियस पर्सन. अगर आप देखें आईने में, देखें खुद को, समझे तो आपको समझ आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है. सो जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि ऑलमाइटी ने हमारे लिए ये ज़िंदगी देकर कितना, मतलब हमारे लिए हम कितनी खूबसूरत चीज़ जी रहे हैं, यानी कि हम कितनी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं. चाहे हमारे रास्ते में दुख हो, गम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, हम स्टिल हर एक चीज़ को इग्नोर करते हैं. हम कभी कभार ये सोचते हैं कि देखिए ज़िंदगी है ना, खुश है, हमें खुश रहना है और इसके लिए हमें किसी और की नहीं, हमारे अपने विल की ज़रूरत पड़ती है. सो अपने विल से ही आप फ़ोन भी कर सकते हैं 80-999-0494. टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, मुझे बताइए एंड गलत जगह पे ओवरटेक नहीं कीजिए, सीट बेल्ट लगाइए, ट्रैफिक पुलिस के साथ कॉपरेट कीजिए, सो दैट कि हम किसी भी मुसीबत में ना पड़े. ये गाड़ियाँ फॉलो करती हैं बट मैं तो मानती हूँ वो फॉलो नहीं होता. उससे हीरो क्या बनना, फॉलो तब होता है जब वो आपकी पॉजिटिविटी को फॉलो करते हैं और आप जो पॉजिटिव उन्हें साइंस देते कि क्या चीज़ें ज़रूरी है एक हीरो बनने के लिए, एक सही रास्ता चुनने के लिए, तो वो भी उस चीज़ को फॉलो करके ये चीज़ मैं मानूंगी कि वहाँ पर आप ज़ीरो रही हीरो बनते हैं. 8-999-0494 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीस का हिस्सा बन जाइए.

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज यानी कि खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर। तो मैंने पूछा तो ये खबर विस्तार शांत क्या चु खबर चलान और कमन परचेस बात करें।
1: आज की खबर,
0: आज बात करने जा रही है सैलमन बॉय के बड़े बॉय। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संजय दत्त

0: बर्थडे बॉस।
1: खबर ऑनलाइन।
0: अब ये है खबर कि दोनों को देखते हुए फैंस तो बड़े भाई भावुक हो रहे हैं। देखिए क्या मोमेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। और जब संजय दत्त का बुरा वक्त था तो सबसे ज़्यादा छोटे भाई यानी कि सलमान बॉय ने काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है, और इनके मोमेंट्स को हमेशा वो कैप्चर किया जाता है, वेट करते हैं फैंस की अरे यार कब हुआ, क्योंकि फैंस इनके काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो संजू बाबा के जो एक वो कहते हैं ना क्लोज लोग कुछ ही कम हैं, और सलमान भाई का ये लिखना कि आई लव यू बाबा, इट मेक्स एन ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज फैंस इन दोनों के हैं, और दोनों के फैंस मिला के कुछ क्रेजी हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, जो हम अगर हम देखें तो रिसेंटली भी मूवी धुरंधर में चौधरी एसपी असलम का रोल निभाया है संजय दत्त ने, तो आपको कैसा लगा? और क्रेजी और है ना भाई का, तो भाई का बर्थडे था और दोनों भाई दबाई है। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। 8 999 0494 टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनाव बीच का हिस्सा बन जाइए।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

hits on repeat, show Chunar beats. Ab enjoy kar rahe honi on radio Chunar 90.4 FM. Ye sari baatein ho rahi hain and we are talking about roads jo hamare Kashmir ko badal rahe hain. Kashmir ke roads jo naye roads ban rahe hain, naya Kashmir ban raha hai. Uske bare mein baat karte hain kyunki wo kehte hain na ki agar kisi jagah ki taqdeer badalni ho to sirf manzil nahi, us tak pahunchne wale sare raaste bhi badalne padte hain aur Kashmir mein aaj ye badalte hue raaste ek naya itihas likh rahe hain. Ab dekhiye ye अगर हम इसकी डी मीनिंग भी समझे तो कश्मीर में बहुत सारी, अगर हम देखें तो अभी एक चेंज आ चुकी है, कश्मीर बदल रहा है, नया कश्मीर बन रहा है. और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या नया डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ओवरऑल हमारे जो रोड्स भी है वो भी इसका एक अहम हिस्सा है जो हमें दुनिया के बाकी जगहों से जोड़ रहे हैं और जो रोड्स हमारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है. आप भी शो का हिस्सा बन सकती है. टॉकिंग अबाउट रोड्स जो कश्मीर में फ्यूचर बदल रहे हैं, कश्मीर को बदल रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है. आप सुन रहे हैं ऑटो फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 एफएम. तो जल्दी से बताइए शो का हिस्सा बन जाइए. फिर से बता रही हूँ 8899049044 व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए. आप सुन रहे हैं ऑटो फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 एफएम.

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
1: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।

हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM। हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM। हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

बीट्स ऑन रिपीट तो है शो चिनार बीट्स है, ये सारी बातें हो रही हैं और आज शो पे बात हो रही है रोड्स जिन्होंने कश्मीर को बदला है, क्योंकि कुछ ऐसे टाइम में अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं और रोड्स वो जो हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं, हमारे लिए रोज़गार का ज़रिया बन रहे हैं, और अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी इम्प्रूवमेंट आई है, ऐसी डेवलपमेंट आई है, चाहे फिर हम बात करें सोनमर्ग टनल की या फिर हम बात करें नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर की, सोजला टनल, श्रीनगर रिंग रोड, नेशनल हाईवेज, अपग्रेडेड रोड्स अभी बन रहे हैं जिनकी वजह से हम कश्मीर जो है यानी दुनिया के बाकी हिस्सों से भी जुड़ रहे हैं, उससे देखिए टूरिज्म बढ़ रहा है, रोज़गार बढ़ रहा है, और स्पेशली अगर हम देखें तो हम ये सोचते थे कि पहले जो है टाइम लगेगा, रास्ता ख़राब है और हमारे इरादे बदल जाते थे, तो शायद से हमें वो कहता ना कि हमारा हौसला जो है ना दब जाता था। अभी अगर हम देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, डेवलपमेंट बढ़ चुका है, ऐसे रोड्स जो हमें देश के बाकी हिस्सों से जोड़ रहे हैं, जहाँ से हम अपना कारोबार कर सकते हैं, जहाँ से हम पूरी दुनिया तक पहुँच सकते हैं, तो आज उस डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही, कैसे कश्मीर चेंज हो रहा है, नया कश्मीर बन रहा है, कैसे लोग जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं देश के बाकी हिस्सों से। आप मुझे बताइए कि आप कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं या आपका एक्सपीरियंस क्या ओवरऑल इस चीज़ को लेकर, मुझे बताएं शो कैसे बन जाए। 8999-0409-04X व्हाट्सएप कीजिए और शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए। देखिए सिग्नल नहीं तोड़ना है, रोड्स हमारे लिए है, सेफ्टी के लिए है, और अपना ख्याल रखिए। और कुछ कहना चाहते हैं फिर से बता रही हूँ 8999-0409-04X व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800 180।

7178 1800 1807199. श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026. जय बाबा बर्फानी.

Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

It's on repeat. Show Chunar Beats up enjoy कर रहे थे only on radio Chunar 90.4 FM डे सारी बातें तो हम करते हैं अभी भी बातें हो रही हैं बस कुछ देर के बाद मैं आपके ज़्यादा सुनूंगी मैं वैसे भी सुनती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपस में बात कर पाए बट आज शो पे बात हो रही थी जो हम हमारे रोड से कैसे वो दुनिया भर तक अभी हमें कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ अभी कनेक्ट कर रहे हैं और जो टनल्स है वो कैसे अभी खुल रही हैं खासकर अगर हम सोनमर्ग टनल की बात करें कैसे वो ओपन है अभी टूरिस्ट के लिए या फिर कारोबार चलता है वहाँ से जो बंद पड़ा रहता था रास्ता अभी वो ओपन है विजिटर्स के लिए सो दैट्स द पॉइंट की चेंज आ रही है और खासकर अगर हम बात करें कि अभी बिजनेस बढ़ रहा है लोगों की मदद हो रही है इन रोड्स की वजह से सो चेंज आ रही है नया कश्मीर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली वो एक्शंस के थ्रू दिखाया गया और वो चेंज आई हमारे कश्मीर में अभी भी चेंज हो रही है और ये नया कश्मीर है ये बदलता हुआ कश्मीर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है बट मैं यही हूँ आपके साथ आप अपने पसंदीदा ट्रैक सुन सकते हैं 8899904904 पर आपने टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं और अपना पसंदीदा ट्रैक सुन सकते तो जल्दी कीजिए शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आप अपनी फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, शो कैसा बन जाए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए। आप यहाँ पर अपना फेवरेट ट्रैक अपने लाउड वंस को डेडिकेट कर सकते हैं। जैसे अजहर ने पहली रिक्वेस्ट भेजी है, इस ट्रैक के लिए आप भी सुन सकते हैं। आप भी इंजॉय कीजिए अपने फेवरेट ट्रैक्स ऑन योर रेडियो चैनल 91.4 FM।

इरम की रिक्वेस्ट आई है स्ट्राइक के लिए, आप एंजॉय कीजिए। जी हाँ, मैशअप है। आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 999-0494 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

हाशिम की रिक्वेस्ट है ये ट्रैक के लिए, आप इंजॉय कीजिए। आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं।

0: ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
3: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे,
2: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
3: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
2: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
3: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
2: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
4: शो रेडियो गर्ल स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है असरा और बहुत ही मज़ा आता है। देखिए अब म्यूज़िक अनुमान ख़त्म हो चुका है, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी होती है सैटरडे और वेंसडे को, कि देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है आपसे बात करने का। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम खा लो असरा, देखो सच बोल दो।

0: बिल्कुल, और क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें काफ़ी मज़ा आता है, हम शो करते हैं, और मतलब ये है कि आप हैं, हम हैं, वहाँ क्या है, दस्तूर है, कहाँ जाना है, हुजूर आप और हम मिल के बात कर रहे हैं। शो चुनार बीट्स तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी बात हो रही है शो रेडियो गर्ल्स की। और देखिए थोड़ा सा सस्पेंस था क्योंकि असरा वो ना एक्ट कर रही थी, आई डोंट नो क्यों चुपचाप थी। अच्छा, खामोशियाँ वाला एक्ट चल रहा था।
1: बिल्कुल, अगर मैं खामोशियाँ वाला एक्ट नहीं करूंगी तो कैसे समझ आएगा कि हमारा बम्पर किस रिलेटेड है।
0: बिल्कुल, मैं तो काफी कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये चल क्या रहा है।
1: और चल यही रहा था कि खामोश अगर कोई इंसान हो तो वो बस खामोशियां नहीं जाहिर करता, बल्कि वो अपना एक स्पेस, या हम कह सकते हैं उसे एक प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत होती है कि जहाँ पे उसे मौका मिले कि वो अपनी बात कर पाए। जैसे कि आप ही की बात करें तो दीवा और मैं साथ मिलकर रेडियो गर्ल्स करते हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए भी है और आप सबके लिए भी है।
0: बिल्कुल, और
1: बात करें,
0: बिल्कुल बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। अभी तक ये पता नहीं कि मैं चुप करके बैठी थी और मैं सोच रही थी, कुछ तो सोच रही है या फिर ये ड्रामा कर रही थी। अब इनको आदत हो गई हंगामा में फुल ऑन ड्रामा करने की, बड़ी शो रेडियो गर्ल्स में हम स्पेशली बात करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है असरा, अक्सर हम जब घर में किसी कोई ऐसा इंसान होता है ना जो हमें देखता है कि अच्छा पीरियड्स है, अच्छा तो इस ओपनली क्यों बोल रहे हो आप, ओपनली क्यों बोल रहे हैं इसको, ये गलत है, शर्म करो थोड़ी,
1: सबके साथ हुआ
0: है, मतलब शर्म करो थोड़ी, अच्छा आप पैड्स ला रहे हो, सैनिटरी जो पैड्स आप वो लाते हैं, अच्छा ये ऐसे क्यों लाया, ओपनली क्यों ला रहे, आई मीन इतनी शर्म की बात क्यों होती है,
1: क्यों होती है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है दीबा, इट इज़ सोसाइटल एक प्रेशर भी रहता है कुछ ना कुछ। और जैसे आपने सैनिटरी नैपकिन्स की बात की, सैनिटरी नैपकिन को पहले कागज के जो एक पॉलिथिन होता है उसमें बंद किया जाता है, फिर न्यूज़पेपर में रैप करके देते हैं, फिर पॉलिथिन में रखते हैं, फिर बोलते हैं ये बैग में ले जाना। तो किसी को समझ नहीं आना चाहिए कि समबडी इज मेंस्ट्रुएटिंग, समबडी इज हैविंग देयर पीरियड्स, एंड दैट इज सो
0: That is something जो इंसान को खुद से तोड़ता है, क्या ये इतना इम्प्योर चीज़ है कि मुझे ऐसे बताया जा रहा है कि, क्योंकि ऐसा कभी बोलते हैं ना कि बातें जब हम सुनते हैं कि पहले ऐसा होता था कि इंसान को बोलते थे कि आप इम्प्योर हो, आप हमारे इर्द गिर्द भी मत घुमा, आप सेम बर्तन में खाना
1: नहीं खाओ, किचन में नहीं आओ,
0: ये मिथ्स है।
1: एग्जैक्टली,
0: मिथ्स को समझना है, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हमारे सोसाइटी में जो सच में इन मिथ्स को सीरियस मानते हैं।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। शो रेडियो गर्ल्स अब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। मैं और असरा आपके साथ एंजॉय करते हैं बराबर दो से लेकर आज तक ये शो, एंड हम ट्राई करते हैं कि जो टॉपिक हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाए, क्योंकि देखिए मज़ा आता है कि जब आप भी बात करते हैं और देखिए हंसी निकल गई है असरा की।
2: हाँ, ऑब्वियसली मज़ा तो आता है और ये मज़े मज़े में इतनी काम की बात, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है कि एक्चुअली दे टॉक्स एक्चुअली द टॉपिक्स दे आर सो इन्फॉर्मेटिव। बहुत सारी चीजें हमें खुद भी पता चलती हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को अवेयर करते हैं, एंड वैसा ही एक अवेयरनेस भरा टॉपिक आज भी है।
0: बिल्कुल। अच्छा सर, आपने ये कभी सुना है कि अगर आपके पीरियड्स है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो आप प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी? आपने कभी, क्योंकि अक्सर जब भी पीरियड्स होते हैं, या वी शुड अवॉइड वेट ट्रेनिंग,
2: एक्सटेंसिव
0: वेट हम नहीं उठाना है, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल अपना रखना, बट ये कहना कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते पीरियड्स में, हम जो भी हम कह सकते हैं कुछ हमारे पास

0: पर्टिकुलर फूड है वो नहीं खा सकते, वो भी हमारे अच्छा नहीं खा सकते,
1: दही नहीं खा सकते,
0: एग्जैक्टली अचार नहीं खा सकते. सो ये मिथ्स जो है ये हमारी लाइफ में कहीं फिर वो हमारे लिए ये बन जाता है ना, डेली लाइफ का एक स्टाइल बन जाता है,
1: हैबिट बन जाती है.
0: तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पीरियड्स आते हैं तो हम अवॉइड करते हैं चीज़ों को, या फिर बात नहीं कर पाते हैं कि कभी कभार लड़कियां जो है इस कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है. सीरियस
1: उनको वो सेफ प्लेस मिलती नहीं है कि वो बात करे उस बारे में. उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड है, हाँ पर्दा है क्या है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट कि आप अपनी प्राइवेसी अपने पास रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी बॉडी आपके पर्सनल अफेयर्स के बारे में किसी और को पता चले. बट द पॉइंट इज कि प्राइवेसी और बाउंड्राइजेशन एक डिफरेंट चीज है, और छुपाना और शर्मा कर छुपाना.
0: बिल्कुल, देखिए प्राइवेसी तब तक सही लगती है जब आपको लगता है कि आप सही हो, आप सिक्योर हो, आप सेफ हो.
1: एग्जैक्टली.
0: बट जहां पर आपको लगता है कि हद हो गई, कि अगर ये आप सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे और आप अपनी बीमारी छुपा रहे हैं, या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वहां पर वी शुड नॉट स्टे साइलेंट, बिकॉज वो साइलेंस हमारे लिए उम्र भर के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है. क्योंकि कभी कभार चुप होना सही नहीं होता है.
1: Exactly.
0: अपने लिए बात करना
1: बहुत important.
0: आवाज उठाना और कुछ बोलना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है. एंड वी बिलीव इट कि लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है जब वो इस दर्द को झेल लेती है,
1: वो कुछ भी कर सकती है.
0: सो ये डर नहीं है, ये बस ये है कि हम सोच रहे हैं, हमारा एक वो डर होता है. अपने डर को निकालिए, लोगों का उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें.
1: exactly.
0: ये आपकी हेल्थ है, आपका लाइफ स्टाइल है.
1: जब आपकी खुद की हेल्थ सही रहेगी, जब आप खुद सही रहेंगे, तब बाकी चीजें उतना मैटर नहीं करेंगी. अगर आप खुद की हेल्थ को डिग्रेड करके चीजें छुपाते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने सिब्लिंग्स से, तो वो चीज़ें सही नहीं रहती
0: हैं, नहीं रहती है, और हम प्रॉब्लम्स में ही पड़ जाते हैं. आई बिलीव कि जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आपको जितना हो सके उतना अपने ऊपर फोकस करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीरियड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है. लाइकवाइज हम अगर इस पर बात भी करेंगे तो
1: exactly.
0: कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम इस पर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, अपने घर वालों से बात करें, अपने मदर से बात करें. ये ना कि मुझे फिर किस नज़र से देखा जाएगा. देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है
1: exactly.
0: जो आपको मिली है. दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि आपको ऑलमाइटी की तरफ से एक ऐसी चीज़ मिली.
1: पावर है दैट यू कैन क्रिएट.
0: यस यस,
1: दैट्स अ वेरी बिग
0: बिग पावर. सो जस्ट वेरी, यू शुड बी वेरी, वो कहते हैं ना कि हमें एक फॉर्चुनेट होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है. सो बस यही है कि हम सब ही खुश रहे, और हम ट्राई करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, और हमारी वजह से अगर कुछ भी हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स आपकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, आपके लिए हेल्प बन रहे हैं. हम बस ये है कि हम आपके लिए एक मीडियम है जो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे, और पूरी दुनिया की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे, आपके कानों तक पहुंचा रहे. इट्स जस्ट दैट वी लव यू. आई नो कि आप भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो यूं ही नहीं आप कहते हैं कि हम रेडियो चुनार से बहुत प्यार करते हैं. आई मीन कि जितना प्यार आप इन शोज़ को देते हैं, अभी एक और शो की बारी है, दैट्स हंगामा, फुल ऑन ड्रामा. आसरा अभी सोच रही है कि कितना ड्रामा करूँगी. अरे मैं तो कह रही हूँ आप सुनिए तो सही, तो फुल ऑन ड्रामा हो जाएगा हंगामा जो है. फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिए. कल संडे है, हम मिलेंगे मंडे को बराबर 12 बजे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM हर देखिए.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

एंट्री तो मैंने पहले ही ले ली थी रेडियो गर्ल्स से, बट अभी देयर इज अ ट्रांजिशन दैट इज रेडियो गर्ल्स से शो हंगामा, जहां होता है भरपूर ड्रामा। सुधरने की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अब आज का मोटिव ही यही है कि हम आज वीकेंड को मस्त एंजॉय करेंगे और बातें करेंगे संडे की, क्योंकि संडे इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द वीक। अभी फिलहाल शो शुरू हो चुका है, बहुत सी बातें हैं जो चार तक हमारे जो विचार है वो एक्सचेंज होंगे और बहुत सारी बातें होंगी और आपको पता चलेगा कि ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल था जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। और देखिए आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी, और एक्चुअली ऐसा क्रेजी कि आपको थिरकने पर मजबूर कर दे। अरे हमारा भी दिल कह रहा है कि खुल के जिए, क्योंकि दिस इज सैटरडे नाइट। जब भी मैं सुनती हूँ सैटरडे का नाम तो अंदर से कुछ हो जाता है, क्योंकि याद आता है कि सैटरडे नाइट के बाद है संडे, तो छुट्टी छुट्टी।

जी हाँ, रॉक द पार्टी एंड वेल्स पार्टी टुनाइट, इट्स हेयर शो हंगामा, रेडियो सुना 90.4 एफएम, शो शुरू हो चुका है, हंगामा है, ड्रामा है, मैं हूँ सब है, क्या चाहिए, और मैं मस्त रहा सुन रही हूँ रेडियो सुना, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। और अभी की बात करें तो शो शुरू करने के बाद हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में क्या चल रहा है। एक्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट, स्टोरीज, लिप सिंकिंग, डांस रील्स, क्या क्या हो रहा है। और अभी की बात करें तो आजकल एक स्पेसिफिक जॉनरा ऑफ प्लेलिस्ट, म्यूजिक प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। लोग इसे सुन रहे हैं, इन पे मीम्स बन रहे हैं, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम। देखिए देखिए देखिए, मेरा मैं गाती हूँ, आप अगर मेरे रेगुलर लिसनर हैं आपको मालूम है कि मैं बीच में कुछ ना कुछ तो पंक्तियाँ गा ही लेती हूँ। बट अभी की बात करें तो ये जो गाने हैं, इस तरह के जो गाने हैं 2000s के, 90s के, ये गाने काफ़ी ज़्यादा अभी वो OG इंडियन बस ड्राइवर प्लेलिस्ट के नाम से ऐसी मीम्स वायरल होते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई सुनने में मज़ा आता है, बट ऐसी फीलिंग आती है कि किसी ट्रक में, किसी बस में बैठ के सुन रहे हैं।
1: तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं,
0: सच बताना है ना, ना लग रहा है ना कि किसी बस में बैठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस हाँ जम्मू के रास्ते चल रहे हैं और ऐसे जो प्लेलिस्ट है, ऐसे जो गाने हैं वो चल रहे हैं और एकदम ओजी प्लेलिस्ट है ये तो।

आया इमोशन देखो, लिरिक्स देखो, कॉम्पोजिशन देखो, मजा ही आ गया। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और उसके बाद बहुत सारे और ट्रैक्स, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैक्स का वादा रेडियो सुना देता है सबसे ज्यादा। एंड अब दिस दीज लाइक अभी का इंटरनेट जो भी कह रहा है, देखिए ये मैं नहीं कह रही कि ये OG बस ड्राइवर प्लेलिस्ट है, बल्कि ये इंटरनेट कह रहा है, और बल्कि हमारे लिए तो म्यूजिक म्यूजिक है भाई, वाइब वाइब है। एंजॉय कीजिए, मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: अजी वेलकम बैक द ऑरस फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे शो चल रहा है हंगामा शो है हंगामा जहाँ पे अभी हम बात करने जा रहे हैं रेलवे अपडेट के बारे में और आज की अपडेट यही है एंड आई वांट टू एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट एन अपडेट दिस इज अ रिमाइंडर बिकॉज हमने इसके बारे में पिछले दो दिन से कंटिन्यू बात की है कि कैसे जुलाई 31st से लेकर 14 अगस्त 2026 तक तीन बानिहाल बड़गाम बारामूला वाले रूट पे जो तीन ट्रेन जाती हैं वो सस्पेंडेड है कुछ टाइम के लिए 31st जुलाई से लेकर 14th ऑफ अगस्त तक। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में काफ़ी लोग सराह रहे हैं और बात कर रहे हैं इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली आज के डिजिटल ज़माने में इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ वायरल हो रही है ट्रेंड कर रही है या लोग पोस्ट कर रहे हैं एज अ रिव्यू दैट इज़ अ फीडबैक फॉर गवर्नमेंट फॉर एवरीबडी अराउंड और स्पेशली जो रेलवे लिंक है फ्रॉम जो कटरा तक जाती है चिनाब ब्रिज से क्रॉस करती है जम्मू पहुँचती है ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ वेरी ट्रैवल टाइम कट हो रहा है और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिल रहा है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें स्पेसिफिकली जो टिकट्स हैं वो बुक नहीं हो रही वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ रहा है बहुत टाइम तक और वो हमारा ह्यूमन एरर है बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट वी हैव टू बुक द टिकट्स प्रायर द टाइम यू हैव टू बोर्ड द ट्रेन। देखिए हमेशा मैं ये कहती हूँ कि सवारी अपने सामान और खुद की खुद जिम्मेदार है तो अपना ख्याल रखिए और अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुँचे ताकि आपके शेड्यूल में कोई डिले ना हो। मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार और कुछ ही ट्रैक्स बाद और भी बातें करेंगे और स्पेसिफिकली जो भी टॉपिक है आज का वो रिवील होगा कुछ टॉपिक्स के बाद कुछ ट्रैक्स के बाद। मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM ये है हर दिल की धड़कन।

0: मर जाए।
1: Exactly, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में चिंता करते हैं तो वो चिंता करने से वो काम सॉल्व तो होता नहीं है, बल्कि आप इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि आपकी जो मतलब मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाती है। और अभी की बात करें तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट इज फिकर नॉट और ओवर थिंकिंग को बोलो बाय बाय। एग्जैक्टली, जो भी होगा होने दे, और जो होता है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो आप करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और आज का टॉपिक ओवरथिंकिंग है, क्यों करता है एक इंसान ओवरथिंकिंग, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, और एक इंसान अगर ओवरथिंकिंग करता है तो उसके कुछ लाइक साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं जो एक्चुअली प्रूव करते हैं, कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट कुछ फैक्ट्स ही बात। अभी फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है।

हाय, मैं हूँ अच्छा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, जैसे कि आज हम ओवरथिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली ओवरथिंकिंग? ओवरथिंकिंग होता है जब हम कभी पास्ट के जो इवेंट्स हुए होते हैं या फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचते थे फिर सोचते थे और इतना सोचे कि ये समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे मेंटल एग्जॉशन और डिस्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और हमें हम किस किस फॉर्म में ओवरथिंक करते हैं, या तो हम ये सोचते हैं कि पुरानी कॉन्वर्जेशन क्या हुई थी, अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे क्यों ऐसा बोला था, और फिर ऐसे हुआ था, फिर मुझे बुरा लगा था, फिर आगे भी बुरा लगा था, फिर मुझे डर लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो पुरानी हो चुकी हैं उसे हम रूमिनेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म है, दैट इज़ कॉल्ड एज वरीइंग। वरीइंग यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, एक ऐसे वर्स्ट के सिनारियोज बनाना कि अगर बुरा हुआ तो सबसे ज़्यादा बुरा क्या चीज़ होगी, ताकि मैं एक कहते ना वो हाइपोथेटिकली एक थ्रेट बना लेना कि भाई अगर कल को कुछ बहुत बुरा हो सकता है तो क्या हो सकता है। अच्छा ठीक, तो अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो कल को अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर कल को मेरे पेरेंट्स की सेहत ख़राब हो गई तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान को अपनी अपनी रिस्पेक्टिवली इंसान बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच सकता है कि उसे ऐसा फ्यूचर की टेंशन होने लगी और वो इतना ज़्यादा सोचे और उसको ये समझ आए कि सोचने से कुछ लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू have to go with the process. Life is a process that you have to live. और आप कुछ चीज़ें सही करेंगे, कुछ चीज़ें गलत करेंगे, but सीखेंगे आप दोनों ही चीज़ों से। अब देखिए, there is one more thing जो actually बहुत ही बड़ा reason है जिसकी वजह से mental exhaustion, overthinking का शिकार हो जाता है एक इंसान, but उसके बारे में हम कुछ ही ट्रैक से बात करेंगे, because that is a very broader perspective thing। उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी daily life में हर जगह वो एक चीज़ देखने को मिलती है। That form of overthinking is everywhere। अभी के लिए फिलहाल आप ये ट्रैक enjoy कीजिए, और इसके अलावा back to back tracks only on Radio Sonar 90.4 FM, क्योंकि back to back tracks का वादा Radio Sonar देता है ad free music का वादा सबसे ज्यादा। मैं हूं अस्लम, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

मैं मास्टर शो चल रहा है गामा ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 FM. और अभी के लिए दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ द शो. और आज का टॉपिक ओवरथिंकिंग है, सो यू कैन आल्सो टॉक अबाउट दैट. क्या वहाँ कुछ कोई ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो आप ओवरथिंक करते हैं, कुछ ऐसा है जो एक्चुअली यू थिंक अबाउट अ लॉट बट आपको समझ नहीं आता कि उस बारे में क्या करें क्या ना करें. या आप अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. 8899-0494 इज द नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं मास्टर सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। और जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर इज द फाइनल फॉर्म ऑफ ओवरथिंकिंग। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपको सिंपल चॉइस करनी हो जिंदगी में, कुछ आपको एक डिसीजन लेना हो और आप बार बार यही सोचे कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो इसके रॉन्ग आउटकम्स क्या आएंगे, यानी कि क्या बुरा हो सकता है। हर बार कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचना, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सोचना कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है। और देखिए, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना जरूरी है, आपको खुद के लिए, कभी कभी आपको अपने लाउड वंस के लिए डिसीजन लेना जरूरी है। और जब आप ये सोचते हैं कि शायद इस डिसीजन का जो आउटकम है वो बुरा होगा, इट विल बी रॉन्ग, एवरी टाइम वी थिंक कि जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी होती है कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। बट देखिए, दुनिया कितनी ही सही है कि आपका एक छोटा सा डिसीजन गलत हो जाए। और इन्हीं चीजों से बचना है, और अगर दुनिया और आप भी गलत है तो कोई बात नहीं है।
3: मेरी बातें गलती से ही दुनिया बनी।
2: एग्जैक्टली, कि दुनिया भी गलत है, हम भी गलत हैं, और कभी कभी थोड़ा गलत होना चल जाता है। मैं मसरा सुन रही हूँ रेडियो सुनार, और ओवरथिंकिंग से कैसे बच सकते हैं अगले आने वाले कुछ जो हमारा कनेक्शन है उसमें, हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं मसरा सुन रही हूँ रेडियो सुनार 90.4 FM, और इंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स। मैं बस यूँ गई और यूँ वापस आई।

Hi, my Wasra. Welcome back to the show Hangama, जहाँ पे आज की जो information है, it's related to overthinking and देखिए एक loop बन जाता है जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो एक loop बन जाता है, हम बस उसी cycle में उसी loop में फंस जाते हैं, बार बार वही सोचते हैं कि क्या होगा अगर वैसा हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बट अभी की बात

करें तो जो जिस तरीके से यू कैन रिकवर योर सेल्फ एंड ब्रेक द लूप, इफ यू वॉन्ट ब्रेक द लूप विल रिपीट टुमारो, इट इज अ सेइंग. बट देखिए अभी की बात करें तो जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स रहती हैं, आप देर इज 3 for 3 रूल, जिसका मतलब है कि आपके आसपास 3 चीजें आप देखें कि आप क्या देख पा रहे हैं, 3 चीजें जो आप सुन पा रहे हैं एंड 3 बॉडी पार्ट्स जो आप मूव कर पा रहे हैं, और उस वजह से आपको एक सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है कि मैं एक सेफर जगह पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, एक प्रेजेंट सिचुएशन मेरी क्या है. इसके अलावा अगर बात करें तो इफ़ यू राइट डाउन, इफ़ यू जर्नल योर थॉट्स इन अ डायरी, इन अ बुक, इन अ नोटबुक, ये एक्चुअली आपका जो मेंटल लूप होता है वो एक्चुअली क्लियर हो जाता है. और सबसे बड़ी बात, दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल. और सिर्फ और सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं, बल्कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं उस चीज़ के लिए भी ये टेक्निक काफ़ी यूजफुल है. दैट इज़ कि आप अपने आप से पूछिए, चैलेंज करिए उस थॉट को कि क्या सच में जिस वजह से मुझे फेयर महसूस हो रहा है, जिस वजह से मैं डर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्या ये एक फैक्ट है या सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन. Honestly, ये बातें बोलने में काफ़ी आसान लगती हैं, बट ये आसान नहीं है. बट द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. और हर कोई चीज़ जब तक आप अपने लिए कर रहे हैं, अपना मन साफ रख के कर रहे हैं, अपने किसी के बुराई के लिए नहीं कर रहे बल्कि बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, अपने बाकियों के, और अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए. देखिए ये सारी चीज़ें बहुत बोली जाती हैं, हम सुनते भी हैं, बट दूसरों के साथ बुराई है नहीं है क्या है, बट अपने साथ भी बुरा नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है. और इस चीज़ पे अगर दुनिया के लोग अमल करें तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. अभी भी कुछ वक्त बाकी है आपकी और मेरी कॉन्वर्जेशन में, और 8899904904 इस नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स. अभी 4 बजे में कुछ वक्त बाकी है, तब तक के लिए आपका मेरा साथ बना रहेगा. सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

बिल्कुल धक धक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज मैं जा रही हूँ, कल है छुट्टी। मस्त शब्द है छुट्टी। कल संडे है, दिस इज सैटरडे नाइट, मजे ही मजे। और अगर आज की बात करें तो अभी सैटरडे के दिन अलग ही वाइब होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सैटरडे एक ऐसी वाइब होती है कि भाई चिल करेंगे, कल भी संडे है, लेट उठेंगे, अपना काम करेंगे, मस्त अपना सोल रिचार्ज करेंगे। जी हाँ, मैं अपने मोटिव से उधर इधर हटती नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमेशा मैं इसी बारे में बात करती हूँ कि कैसे संडे इज़ द डे एक्चुअली जो आपको मौका मिलता है। और लाइक इफ़ यू आर गॉड्स फेवरेट, फिर आपको सैटरडे भी छुट्टी हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। लाइक आई एम नॉट जेलस बट मे बी आई एम। बट अभी की बात करें तो दिस इज़ कल संडे है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मोर ओवर अभी मैं जा रही हूँ, कल नहीं परसों वापस आएंगे, बराबर 2 बजे वापस आऊँगी मैं, एंड करने आप सबको एंटरटेन और बताने कि क्या चल रहा है दुनिया में। शायद ये कुड़ी मैं थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ सैटरडे सैटरडे करती हूँ, और संडे तो मेरा पहला प्यार है, सैटरडे मेरा दूसरा प्यार है। और देखिए अभी के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैक्स का वादा रेडियो चिटार सबसे ज्यादा देता है। बैक टू बैक ट्रैक्स तो चलते रहेंगे, बस अभी आपका और मेरा साथ यहीं तक था।

बिल्कुल म्यूजिक लाउड बजाते रहेंगे। और देखिए अभी के लिए बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, और आप जो भी कहना चाहते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल्स पे कह सकते हैं RJASRAA। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ टुडे, ओवर एंड आउट।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन, और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। यू आर एंजॉयिंग अमेजिंग म्यूजिक आउट हियर, खूबसूरत सी शाम में खूबसूरत सी मौसीकी आप तक पहुंच रही है। जी हाँ, और क्या चाहिए, ड्राइव कर रहे हैं आप, मेक श्योर कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। म्यूजिक का तड़का रहेगा जारी, आप सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धक धक।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से

0: लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Yay, yay, yay, yay, yay.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: चुनार बीट्स विद आरजे दीवा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ਭੰਗਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰ ਜਿਗੜਾ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਲੋਕਣੀ।
1: अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो जना 90.4 एफएम। हर दिल की धड़कन, खूबसूरत सा सफर, सुहाना मौसम और म्यूजिक और लाइफस्टाइल के हवाले से आज बात तो हमने की, लेकिन कहते हैं ना वक्त की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। घड़ी इशारा कर रही है इट्स टाइम टू रैप अप द शो। जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने में अभी 2-3 मिनट है और एक आखिरी गाना मैं अपने शो का आपके लिए प्ले करूंगा। आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो चिनार। आप 7 बजे सुन पाएंगे सुहानी शाम, आज भी आपकी शाम को सुहाना बनाएगा हमारा प्लेलिस्ट, सो स्टे कनेक्टेड। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स। आरजे साहिल मुजफ्फर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू, मा सलामा।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Radio Channel 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ And buy to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM and we care for you.
4: दिल को
5: करार आ जाए
4: जब भी आए
5: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
5: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
5: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
5: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहा

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।
0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।

दास्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: पंप अप द बगड़ा,
2: व्हाई नॉट
3: पंप अप द बगड़ा,
2: व्हाई नॉट
3: यू वांट टू बी टॉप ऑफ द पॉप्स,
1: पंप अप द

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम and we care for you।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया।

0: अये करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ।

0: लटकट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय
1: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आते सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया।

0: तन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

खुशबू फिजा में बिखर जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो, धड़कन जब सुरीली बन जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

तरफ है। इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: है।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।